0: Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: आज पहली बार स्पेशल फरमाइश पे भाई आपके सामने कमर तोड़ मनोरंजन पेश करने आ रही हैं लवली